0: रेडियो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदूत को नगर पालिका 5 सोलुखुम्बू।

0: उत्तराखंड मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना। गत 2026 अगस्त 20 में आये विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूलो जनधन को स्थिति प्रति हमी गहिरो सचेतन छी राष्ट्रीय विपत्ति को गुजीला गंभीरतापूर्वक ध्यान उक्त मैराथन को मिति सारे हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति देखा अटूट सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नया मिति में इस मैराथन भव्य र सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामीलाई थप सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक आग्रह गर्दछौ। रेक पाण्डा नेटवर्क संघको सहकार्यमा यस आयोजक समितिले आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना गर्ने भनेको रेक पाण्डा म्याराथनको मिति परिवर्तन गरी 2026 नोभेम्बर 28 में आयोजना गर्ने निर्णय गरेको विहरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।
1: अध्यक्ष निमा टेन्डु शेर्पा, हिमाली स्वास्थ्य र वातावरण सुभाष।

0: 政府反論を待ちてください。
1: おいしゃって、ヘルメイ、キャラ今年のさらいしゃく、ブープリン、あの世間に、
2: これ、じゃあ、あれですか？へぇ、一匹パッてやせるの。三万十三万円の一匹パッてやるパッてだ。見たら、ダメクスじゃない、おいしゃくさ。いつもなってな、いつもどんなにやるさに。
1: あれ？めっちゃドラマっぽいじゃん。チームに行くぜ。
2: でも、たてな。
1: たてな。
2: すまん、むっちゃすすまがね、ごえあふれたはねのばいこくらんねくに、わっほいらんねくらお。あの、ブラムクすすまがね、ごぜ、ざみざみ、にえっごす、あふのぱいだ、わっすわさかられ、ほいらんね、がらつすすまお。えっすすまれ、さなざい、ばみっばなんちょ、かんじっぱるさ、みらさがらんさ、らあびすわすたんすすまがるさ。
1: おほん、きしょがいた、えっすすまれ、しえ、まい、ばるんじゅんらぜ。
2: おね、ब्राह्मण र मिथ्या सूचना शेयर तथा कमेंट के पनि गर्नु हुँदैन शेयर गर्ने भए पनि त्यो सूचना सत्य तथ्य हो कि हैन यकिन गर्नुपर्छ त्यसको स्रोत थाहा पाउनु पर्छ नीति र फोटो मिल्छ कि मिल्दैन राम्रोसँग हेर्नुपर्छ आधिकारिक माध्यम हो कि हैन त्यो पनि थाहा पाएर मात्रै शेयर र कमेन्ट गर्नुपर्छ बुझ्यौ
0: भ्रामक सूचना नफैलाऊ जिम्मेवार नागरिक बनाऊ
3: आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र विश्वास

0: ए माइली, आएनौ र हामी बसिन्छौँ अब? मलाई त मोटर नागेर बान्ता गर्दा गर्दा पेटको आन्द्रा पनि चुडिएला जस्तै भइसक्यो।
1: मलाई पनि टाउको दुखेर खुट्टा जस्तो भएको छ।
2: ओहो, कस्तो आत्तिएको थियो मोर्ता, अब आइहाल्यो। यति लामो बाटो कहिले नहिँडेकाले यस्तो भएको। अब गएर एकछिन आराम गरेर नुहाइ धुवाई गरेपछि सब ठिक हुन्छ।
0: होइन ए माइली, चारैतिर घरै घर, मोटरै मोटर, खुट्टा टेक्ने खाली ठाउँ पनि देखिन्न। खै कहाँ हुन्छ त पढ्दैन यहाँ?
2: हरे, यो प्याउलीको बुद्धि! सहर बजारमा पनि कहीँ पढेर हुन्छ त? यहाँ त सबैको घरभित्रै धारो हुन्छ नि। हिँड हिँड, तिमीहरू जुन कोठामा बस्छौ नि हो त्यही कोठाभित्रै नुहाउने ठाउँ छ।
1: हो त नि, हामीले त सच्चै केही देखेकै छैन।
2: सुन, अब हामी बस्ने ठाउँ आइपुग्यो। हामीलाई विदेशमा लगेर काममा लगाइदिने, जहाजको टिकट मिलाइदिने एकजना दिदी हुनुहुन्छ। हुन त उहाँ धेरै जसो हिन्दी बोल्नुहुन्छ, त्यही पनि हामी नेपालीको सङ्गत गर्दा गर्दा अलिअलि नेपाली पनि बोल्नुहुन्छ। पहिले हामी गएर उहाँलाई भेटौँ, राम्रोसँग नमस्कार गर्नु, अनि उहाँले तिमीहरू राजी खुसीले आएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ। हो, हाम्रै राजी खुसीले आएका हौ भनेर भन्नुपर्छ है।
0: किन त्यस्तो भन्नुपर्ने हो नि माइली?
2: काम गर्न जाने मान्छे खुसी छैन भने उहाँले त्यस्तोलाई काममा लगाइदिनुहुन्न क्या? किनभने राजी खुसी नभइकन आएको मान्छेले काम पनि त राम्रोसँग गर्दैन नि, हो कि होइन भन् त?
0: त्यो त हो।
2: ल, यही हो हामी बस्ने घर।
0: ए माइली, कति ठुलो घर हो कि, हामी टेक्नु पनि अप्ठ्यारो राख्ने जस्तो, कस्तो सजिलो हुन्छ।
2: चुप लाग्, खै दिदी पनि कता जानुभएछ? मेम साहब, ओ मेम साहब,
3: कौन है? अरे माइली, तुम?
2: नमस्ते मेम साहब।
3: नमस्ते नमस्ते।
0: नमस्कार
3: नमस्कार। अच्छा, खुश रहो बच्ची, हो खुश रहो। हाँ तो माइली, कैसी हो तुम? बहुत दिनों लगा दिया आने में।
2: एकदम ठीक ठाक हूँ मेम साहब, लेकिन क्या करूँ, दूर का मामला है ना। ऐसा वैसा करते करते इतना दिन बीत गया, आखिर आ तो गई।
3: ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्ची, तुम लोग काम करने आई हो ना? मेरा मतलब है कि तुम्हें हर काम करने आया कुछ है? हाँ, अच्छा, तो एकदम ठीक है। तो तुम्हें हर अपना खुशी राजी से यहाँ आए को हो, या कोई तुम लोगों को फकाई फुकाई करके ले आए को हो?
2: होइन, हामी त एकदमै आफ्नै खुसीले आएको हो।
1: त्यही त नि, हामीले नै माइलीलाई बिन्ती गरेर आए।
3: त ठिक छ माइली, ए बच्ची लोगोको भोख लगी होगी और थक भी गई होगी, इसलिए इन लोगों को अंदर भेज दो, कुछ देर ये लोग भी आराम करेंगे।
2: अच्छा मैम साहब, हरिकला प्याउली फिर भित्र जाओ।
0: हुन्छ। मलाई त कस्तो सुत्न पायो त्यो जस्तै भइरहेछ।
2: ल, के कोठामा बस, लुगा सुगा फेर, अनि दिसा पिसाब गर्न मन लागे टोइलेट यहाँ छ, धुवाई धुवाई गर्न मन लागे बाथरुम पनि यहाँ छ, बुझिस्?
1: तिमीलाई थकाइ लागेको छैन र माइली?
2: अनि टिकटको लागि पनि त व्यवस्था मिलाउन पर्यो नि। तिमीहरू आराम गर्दै गर, म एकैछिन पछि आउँछु।
0: ए हरिकला, त्यो इन्डिया भन्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो छ भने अझ विदेश भन्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो होला कि?
1: त्यही त प्याउली, तर मलाई त घरको पो चिन्ता लाग्न थालेको छ। म हिँडेपछि आमा कति आतिनु भएको होला, भाइलाई त्यस्तै भएको होला।
0: तेरो त बरु आमा आत्तिए पनि सम्झाइ बुझाइ गर्ने भाइ छ, मेरो त झन् बिचरा एक्लो भा, कस्तो भयो होला भन् त?
1: हुन त हो नि, तर जे हुन्छ हुन्छ भनेर हिँडेपछि पिर गरेर मात्र के गर्ने, जे पर्छ त्यही टर्छ। ल एकछिन आराम गरौँ, मलाई असाध्यै टाउको दुखेछ, कुरा भनेको पछि गर्दै गरौँ न।
2: मेम साहब,
3: ओ माइली, आओ अच्छा मेरे पास बैठो।
2: तो मेम साहब कैसे लगा मालता?
3: बिल्कुल बढ़िया जैसे। अरे माइली, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। हा? तेरे चॉइस में कोई भी खोट नहीं होती है, और फिर तुम ही तो मेरे खास आदमी हो जो मेरे धंधा को चकाचक बना देती हो।
2: अरे मेम साहब, वो तो सिर्फ यही की मेरी ही वजह से आपका धंधा बढ़ रहा है, और आपकी कृपा से भी तो मेरा गुजरा चल रहा है ना।
3: हाँ हाँ, तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम। तब बोलो, अब की बार क्या रुपया चाहिए तुम्हें?
2: आपसे भी मैं कोई मोल मोलाई करूंगी क्या? आप खुद जानती है।
0: अच्छा ठीक है,
2: लड़की भी बहुत अच्छी है,
0: इस बार मैं तुम्हें 1.5 लाख दूंगी, ठीक है ना?
2: ठीक है नैन साहब।
0: अच्छा तो आज तो बैठो दी ना तुम यहाँ पे।
2: नहीं नैन साहब, मैं कोई और होटल में बैठूंगी, लेकिन पैसे मैं अभी नहीं लूंगी। मैं होटल में पहुंचकर फोन करूंगी, उसी एड्रेस पर कल सुबह पैसा भेज दीजिएगा।
0: अच्छा अच्छा, तुम जैसे चाहोगी ठीक वैसा ही होगा।
2: अच्छा है नैन साहब, मैं चलती हूँ। नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, अमाली मत भूलना, आते रहना।
4: राम राम भाई।
0: अरे राम राम लल्लन जी, कैसे हो?
4: अरे अच्छे भले चंगे ही है। अरे वही पुराना माल है कि नए नए भी लाए हो?
0: अरे लल्लन जी, ये माधुरी के कोठी है। हाँ माधुरी, ग्राहकों के संतुष्ट दिलाने ये हमारा फर्ज बनता है, और आज एक नहीं पूरी 2-2 नए लड़कियाँ आए हैं।
4: अच्छा अच्छा, रेट तो बताइए नए नए स्वाद का।
0: आज का रेट कुछ महंगा है, 5,000 रुपया दोगे तो चलेगा।
4: 5,000 रुपया? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पहले माल तो दिखाओ।
0: चलिए, इस बार तो आप सब लड़की देखेंगे ना, देखते ही रह जाएंगे। हाँ
4: देखिए आपके बात में कितना दम है।
0: अरे दरवाजा खोलो।
4: वाह भाई जी वाह, माल में तो कोई कमी नहीं है, इनमें से एक को मेरे साथ भेज दोगे?
0: और लड़की तुम जरा इधर आओ।
2: हजू ठीक हूँ, बोलो।
0: समझा नहीं है तिमी ओ यू मान्छे सित जाने हो? हाँ
2: वहाँ सँग जाने रे, किन कहाँ जाने हो र?
0: अरे पगले, वहाँ सँग रात बिताउन जाने हो, किन जाने भने छ?
2: हाँ के भन्नुभयो तपाईँले? माइली खोइ।
0: अरे ज्यादा मत बोलना, हामीले ठिक भने छु, तुम्हारा माइली नहीं है, ऊ त अब आउँदैन।
2: माइली आउँदिन रे? तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ दिदी, माइली कहाँ गई अनि हामी?
0: तिम्रो माइली यहाँ से गयो, अब तुम लोग यही मेरो कोठामा बैठ के मेरो धन्दा चलाओगी? हाँ
2: होइन होइन, यो हुन सक्दैन, माइली त जहाजको टिकट मिलाउन जान्छु भनेर गएकी हो, उसले हामीलाई छोडेर जान सक्दिन। बरु भन्नुहोस् न, माइली कतिखेर आउँछ?
0: मैले कहा ना अब वो नहीं आएगी, हमने तुम लोगों को 1.5 लाख रुपये में खरीदे है। हाँ तुम लोगों का विदेश भी यही है,
2: माइली ले हमी बेचे की।
0: हे भगवान, हमी माथि तो विश्वास कर चुकी सुनु पड़े। आज चिल्लाना बंद करो, हाँ ये रोना धोना नहीं चलेगा यहाँ पे, चलो इनके साथ चलो।
5: नाई दीदी तिमी छोइस त भन्नुस, हामी माथि दया गर्नुस दिदी, हामीबाट यस्तो काम हुन सक्दैन दिदी, हामीलाई त माइलीले विदेशमा नोकरी लगाइदिन्छु भनेर ल्याएकी हो नि, त्यसैले पेटिन्छ दिदी, हामीलाई हाम्रो घर जान दिनुहोस् न।
2: लल्लनजी जरा यसो पक्रिय, चल जल्दी चले हस।
4: अरे आओ डार्लिंग आओ, आज की रात रंगीन बनाए, चलो डार्लिंग।
5: ना
4: चलो चलो
0: तुम भी कान खोल कर सुन, तेरे पास भी एक ग्राहक आ रहा है, उसे खुश करना समझी, और यहाँ रोना धोना सब बंद करना और अपने धंधा को संभाल लेना।
5: हे भगवान, कुन जुनी को पाको सजाय दिदै छु बलबु, के सोचेर आएको थिए, कस्तो कस्तो सपना देखेको थिए, तर आज साप चटना चुर भयो, यो नर्कबाट छुटकारा दिलाइदेऊ, अर्काको ललैमा लागेर घर छोड्दा आज यो अवस्था आइपुग्यो, एउटा साथी भनेर विश्वास गर्दा आज हामी माथि यस्तो विश्वासघात। पख माइली, त पनि त्यस्तै बच्न त के पाउलिस र, तर यहाँबाट कसरी निस्कने, न त साथमा पैसा छ न त कोही चिने जाने।

0: check. City FM, the studio time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय Offset Press, सोनू दूध को नगर पालिका 500 कुंभू.